सवाद वो पूरे ना हो याद छोटे से ना थे बेबुनियाद दिल बली दूसरों की बात दुख दिल